गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण स्वामी प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ देव सहाय गै कंठ लाए।

0: गास
1: ओढ़ ओढ़ कपाल थके वेद कहने एक बात
0: सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक धात
1: लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश
0: नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप
1: साला ही साला इति सुरत ना पाईया
0: नदियां अते वह पवे समुंद न जानिए
1: समुंद साह सुल्तान गिरहा सिति माल तन
0: कीड़ी तोल न होवनी जेत समनो न विसर
1: अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने देना अंत
0: अंत न वेखन सुनना अंत अंत न जापे क्या।

0: गावे है चित गुप्त लेख जन है लेख लेख धर्म बिचारे
1: गावे है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे है इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले
1: गावन सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बेचारे
0: गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ने रखी सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मूनिया मन मोहन स्वर्गा मच प्याले
1: गावन रत्न पाए तेरे असर तीरथ नाले
0: गावे जोध महाबल सूरा गावे खाने चारे
1: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर तारे
0: सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
1: और केते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
1: हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
0: रंगी रंगी पाती

0: जम है पूत है अशुत
1: है शोक है कर्म है परम है
0: अजीत है अपीत है अपाह है अगाह है
1: मान निदान है नेक है फरीक है
0: उच्चांग प्रयात शंद
1: नम सर्वमान्य समस्ति निदान नम देव देवे अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गुणे नमो सर्व गुणे
1: नाथिन संगी परमाथिन पान

0: मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सदा नाम सर्वं परनासीन उपे रूपे समस्तल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध्व धंग गंग ओग हर्ता
1: परमेश्वर पुरुष पालं सदा सर्वदास दाता दयालं
0: अशेदी अपेदी नामंग कामं समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी शंद
1: तले पीता पे
0: है प्रभु है जू है देश है अपेश है पुचंग पयात शंद आदि
1: अवादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निदाने
0: नमस्तवंग निन्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
1: नमस्तवंग काली नमस्तवंग पाल नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महावाहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सोखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
1: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृशंग नमो सर्व रंगे तरपंगी अरंगे नमो जीव
1: जीवं नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तंग प्रसिजे
0: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट शांत व प्रसाद
1: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे तल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
1: दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
1: सर्वंग देवं सर्वंग भेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: प्रवाल शांत व प्रसाद
1: आरूप नादमो जोन पुरख पार
0: सर्व मान देव पेवाद
1: सर्व कालक सर्व कोपन

0: राजा बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा
1: स्वरूप
0: रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संग रो
1: सकल
0: मनेश करो शरणी परि तन के दुष्ट दुख तो हुआ मरे
1: तिनके तुम संकट सब
0: तारे कल कुकबार ताके काल निकट न है तन जाए निहर हो ताके ताव तन कुमो हर हो
1: सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सब सके ना।

तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। आपे जाने करे आप, आपे आने रास। तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी। मैं दीजे नाम नवास, हर गुण गावसी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ नदयावे ताए। सब थाई हुई सहाय, दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अमृत के दाते सरबंस दानी, पंथ दे बाली सतगुरु जीओ। सब थाई हुई सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत। जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, धन धन धन सह।

सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान, सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तू दाखिया लाख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच त्यान सच, जो मर जमै सो कच निकच महला पहला।

कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा साथ ऐसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिंजया गुर प्रसाद सब जया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोय सोल नय किस जन्मे नय किस मरे अपन चलता आप ही करे आवण जावण दृष्टियां दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अणक जुगत राय थापू तब अवनासी नाई किच कांड धारण तारे ब्रह्मांड लख पे पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरय तिन मंत प्रभ के सहयोग सगल धारण प्रभ के सहयोग दुख विसारण आपे मेह लय कृपाल गुरु का शब्द जप निहाल उनकी सेवा सोई लगन चनो कृपा करे बड़ भागै नाम जात पावे विश्राम नानक तिन पुरख तम कर मान जो किछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय होवे सो होए करने हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मिट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तमाय समाय सुख निधान नु बन आया पुष्को आप दिनो मान नानक प्रभ जाने को जान चलोक सर्व कला भरपूर प्रभ विरथा जानन हार जा कर सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंड नहार गोपाल सर्व जिया पेपरत पाल सगल की चिंता जिस मन माए जिसते विरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जा बबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कुछ न होए जिस प्राणी लोचै कोय तिस बिन नाही तेरा कुछ काम गत नानक जा पे कर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जो सगल घट सोए तनवंता होए क्या को गर्भ जहाँ सब किस तिस्कर दी अंदर ब्यार सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वे जे को होए बह दाता तिस दे नहा दया नह गवा जिस गुर प्रसाद तुटे हों रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदर को थामे थमण त्यों गुर का शब्द मने समण ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे ज्यों अंधकार दी प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा ध्यान मह मार्ग पावे जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाछो धूर नानक की अरलोचा पूर मन मूर्ख काहे मिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तुथे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान कौन बस तय तेरे संग लपत रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माय नानक बस हेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन घर पया तज मान लिव मन मूल राम नाम हृदय मैं तो लाद खेव संत संचाल अवर त्याग खे जंजाल धन धन कहे सब खोए मुख उजलार दरगह सोए एहो वापार विरला वापारे नानक ताक सत बलिहारे चरण साधके धोए धोए पीओ अर प्रसाद को अपना जियो साधके धूर करो इस नाल साधु उपर जाइए कुरबान साध सेवा वडभागी पयो साध संग हर कीर्तन गयन कविगण ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखै ओट गही संते दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतो को जीवालन हर भुखे कहो देवते आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए पुरब लिखे का लहना पाए सब किश तिस काउ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब चोच निर्मले करने कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया ते लोए जाँ के हृदय को होए सच करनी चैता की रहत सच हृदय सत मुकैत सच दृढ़ सच आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समर्था सलोक रूप न रेख न रंग किश त्रैगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाई नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अब नासी प्रभ मन में राख मन की तू प्रीत आग तिस्ते परे नाही किश कोय सर निरंतर एको सो आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक मने अनराव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण परण जाकर नेत्र हो तिसका मंत्रणा जाने हो रण दुरु मंगल सा जाकर सर्वत हो तुनिया करता कह राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपेसर ग्रसत मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरगा के न्यंत न पाया जा के लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अव गाय पिता के जन्म के जाने पूर सगल पुरो अपने सूस मत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते अवे से तह गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए उचनी तिसके आसान जैसा जनावे तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना विद किनो विसार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे किन माए भू रहे पूर्ण सब उठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत पे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगले।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सात सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे जिंद आसा नित त्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सात संग अगन सागर तरो हर धन के परल्यो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो जित तुआ नारायण एक एक रंग जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार।

सचे साहिब स्यो मन मानिया हर सर्ब निरंतर जानिया रहाउ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करे प्रतपाला।

प्यारा ढूंढ टुनाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुर नानक तुठा मिले हर पाई, सूही महला चौथा हर कृपा करे, मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाए रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुगद नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग न होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा। जहवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवै सहज समाए, हर रस जन चाखो जे पाई, हर रस जन चाखो जे पाई, तो कत अनत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उर तार, हर रस राते रंग मुरार, मन मुख हर रस चाख्या न जाए, होमै करै बहुती मिलस जाए, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस हर गुण गावै, सुही महला चौथा कर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत्ता किसन उतरिया घर जिस जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लै जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लै जाए रहाओ। रविदास चुमार उस्तत करे, हर कीरत निमक एक गाए, पतित जात उत्तम भया चार वर्ण पे पग आए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम दियो लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख अठसठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा। तिन्ही अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवै सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका जिन हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाईऐ, सिर निंदक कै पवै शारा, जिस घर विरती सोई जाणै, जगत गुर नानक पूछ करो विचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद बखीली किन न पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा। जिथे हर आराध्या तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया न जाई, हर धन संचिया भाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर धन खटिया, होर थै होरत उपाय हर धन कितै न पाई, हर रत्ने कावा पारिया, हर रत्न धन विहाजे, कच्चा के वापारिये वाक हर धन लया न जाई, हर धन रत्न जवे हर माणक, हर धनै नाल अमृत वेलै वत्तै, हर भगती हर लिव लाई, हर धन रत्न जवे हर माणक, हर धनै नाल अमृत वेलै वत्तै, हर भगती हर लिव लाई, हर धन अमृत वेलै वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही, हलत पलत हर धनै का भगतां को मिली वड्याई,
हालत पलत हर तन की भगतां को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, एह हर तन अग्नि तस्करै पाणी जमदूतै किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचक्का नेड़ ना आवई, जम जागाती डांड ना लगाई। साक्ती पाप करकै बिख्या तन संचया, तिना एक विख नाल न जाई। हलते विच साकत दुहेले पे हथों छुड़क गया, अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का शाह हर आप है संतो, जिसनो दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक को गुर सो जी पाई। सूही महला चौथा, जिसनो हर सुप्रसन्न होए, सो हर गुण रवै सो भगत सो पुरवान। तिसकी महिमा क्या वर्णिय, जिसका हृदय वस्या हर पुरख भगवान। गोबिंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निदान। जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे, सो नहफल सब अज्ञान। जिसनों

खाया, अमृत नाम तुम बोल मुख खाया, कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जां फिर कर आवे, गुण कामन कर कंत रिझाया, बस कर लीना गुर परम चुकाया, सब ते उच्चा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा, प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विशाई शरद अपारा, नाव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर धन मिल

उसको डुबता गुनाहगार लून हरामी पाहन नाव ना पार ग्रामी गुर मिल नानक ठाकुर जाता जल थल महियल पूरन बिधाता सुही महला पंजवां।

किछ नाही सब किछ तेरा, हाँ किछ नाही सब किछ तेरा, ओत पोत नानक संग बसेरा। सूही महला पंजवां, सुख महल जाके उच द्वारे, तामे वासें भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की आत्मीठी, बिरले काहू नेत्र होंडी ठी। रहाओ तह गीत नाद आखारे संगा, उहां शांत करें हर रंगा, तह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वरखा। गोहज कथा एह गुरते जानी, नानक बोलै हर हर बाणी। सुही महला पंजवां, जाकै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एह पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। रहाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बिदारे, जाकी तीरक इस मने सुधारे, जाकै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे,

सुधारे कर मुंजन सेवा जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बादशाह शाह व्यापारी मरना जो दिस सो काल है खरना कूड़े मोह लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात सुही महला पंजवा काट काट अंतर तुम्हें बसारे सगल समग्री सूच तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण अधारे तुम ही पेख पेख मन बिग सारे रहाओ अनेक जोन प्राम प्राम प्राम हारे ओट गही अब साध संगारे अगम अगोचर अलख अपारे नानक सिमरै दिन रह नारे सुही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जाको बिन सतबार न काई एहो सुपना सोवत नहीं जानै एहो सुपना सोवत नहीं जानै अचेत व्यवस्था महल पटानै रहाओ महा मोह मोयो गावारा पेखत पेखत ऊट सुधारा ऊचते ऊच ताका दरबारा कई जानत बिना है उपारा दूसर हो आना को होई जप नानक प्रभ एको सोई सुही महला पंजवा सिमर सिमर ताको हों जीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा सो हर मेरा अंतर जामी भगत जना के संग स्वामी रहाओ सुन सुन अमृत नाम

पंजवां मीत साजन सुत बंधप भाई जात कत पेखो हर संग सहाई जात मेरी पत मेरी धन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जप पहर सनाह कोट आवद तिस बेदत नाह हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे काल कंटक जम तिस ना बिदारे काल कंटक जम तिस ना बिदारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सुही महला पंजवां गुण गोपाल प्रभ के नित गाह आनंद विनोद मंगल सुख ताह चल सखिए प्रभ रावण जाहा साध जना की चरणी पाहा रहाओ कर बेनती जन तूर बंछाह जन्म जन्म के किल विखलाह मन तन प्राण जियो अरपाह हर सिमर सिमर मान मोह कटाह दीन दयाल करो उत्साह नानक दास हर शरण समाह सुही महला पंजवां बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल रिदमाह निवासा सुन मन तन सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो हर अनेक व्यंजन तुझ भोग पुंचावो रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही अचरज साध ताके बरने ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन्म के पै मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे सुही महला पंजवा अनेक बेंग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महा बिकराला खिन में दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत पारी दूर पई जप नाम मुरारी दृष्ट तार लीनो लड़ लाए हर चरण गए नानक शरणाए सुही महला पंजवा दीन छडाए दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाए जो तिस पावै सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन कह तो सह दुनी ना जाए सर्ब निरंतर एको जागे जित जित लाया तित तित को लागे अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा सुही महला पंजवां प्रातः काल

साध गावै गुण सदा रसाला रहा। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसै तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता

करण कारण समरथ अपार रहाओ, सब रोग मिटावै नवा नरोआ, नानक रखा आपे हुआ। सूही महला पंजवां, दर्शन कौ लोचै सब कोई, पूरै भाग प्राप्त।

कित ही काम ना तौल हार जित हार बिसराए रहाओ आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए जल जाओ ए बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोख आए पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृपताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाट पटंबर बिरथिया जह रच लोभाए सब किछ तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा हर का संत प्राण

चौर टुलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अभिमान शरणी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन कादर।

चितवों मन आसा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभु दया कर दास चरणी लागो सुही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ राख लिहो एह बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़।

प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जाप मन गोविंद एक अवर नहीं को लेख, संत लाग मन छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनेक कोठरिया पेन पेन पेन पेन करिया, बेच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहु बिद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हार द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गोर मिरिया बोहर ना फिरिया। सुही महला पंजवा, रास मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारा, कहन कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तो मैं आया शरणी आया, भरोसै आया कृपा आया, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाओ। महा दुत्र माया जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया करो त्रम राया, ग्रह आंध को पाया पावक सगराया, गही ओट साधाया नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कार शेमा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिला नाम आधारा, तुठा सच्चा बादशाह ताप गया संसारा, भगतां की टेक तू संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दर सारा, हां कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा, गुर नानक मिलिया गुर नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सूही महला पंजवा, घर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मना है, जिसनो होए दयाला, साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जियां प्रतपाला, मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै सो परवान, मन तन तू है अधारी रहाओ। तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा, तू अथाह अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी पाते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। दिन रैन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगै, साहिब तुठै पावा। सुही महला पंजवा, विसरै नाही जिस तू कबहूं, सो थान तेरा केहा, आठ पहर जित तुद त्याई, निर्मल होवै देहा, मेरे राम हां सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग, तिन शरणाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तेल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरै मिल लाते, ते पी मोहे माई, दस अवतार राजे हुए वरते, महादेव औतूता तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता, सहज सुख आनंद नाम रस, हर संती मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक,
ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ ਬੇ

सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हार जान कै पीसन पीस कमावा नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखन पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण धूर तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राये ज्यों राखें त्यों रहिए तुद पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप करा है तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदा ला है सिमर

पहर आराध्य है, तेरी शरण तेरा परवास है, पंच दुष्ट लै साधे। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवा, सगल त्याग गुर शरणी आया, राखो राखन हारे, जित तू लावै तित हम लागा, क्या ए जंत विचारे। मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। रहा आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होया सब रेणा, जीव त्या मरिया। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाउ जापे, सगल मनोरथ तिसके पूरन, जिस दया करे प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजै, नानक साध रवाला। राग सूही अष्टपदियां, महला पहला घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सब अवगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना। रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवै, ता सुहागण जा कंतै पावै। ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई। खरी सियाणी कंत न पाणी, माया लागी भरम भुलाणी। हों मैं जाई तां कंत समाई, तो कामन प्यारे नव निध पाई। अनेक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रभ राया। भणत नानक शौ है पी होसी, जय पावै प्यारा तैरा वेसी। सूही महला पहला घर नौवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। कच्चा रंग कुसुंभ का।

व्यापी कार दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया तन मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पैराओ मन तन सच सलाह साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपुरा पाया हों जीवा गुणसार अंतर तू वसै मन माह सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखों केतड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाना मन तन भंग है गुर की कार कुमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाइया त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाइया बिन बुझे सब दुख दुख को

देहो दीवी अंधकोर कब मुहैया गर्भ मुस्सा कर चोर के सुरवाइया गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया शब्द निवारी आग जोत दीपाइया लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाइया सदा रहे नह काम जे गुरमत पाइया रात दह हर नाव मन वसाइया नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया सुही महला पहला मनो न नाम विसार एन स्त्याइया जो राखे कृपा तार तिवै सुख पाइया मैं अंधले हर नाम लप

सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले, हर की भगत सदा रंग राता, हमें विचों जाले। वाह वाह पूरे गुर की वाणी, वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साच समाणी। रहाओ काया अंदर सब किच वसै, खांड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सबना करे प्रतपाला। काया कामण सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै, अलाख ना लख्या जाई, मन मुख मुग्ध बुझै नाही, बाहर पालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ, भगत परे भंडारा। इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाई है, गुर कह शब्द विचारा। काया अंदर तोल तोलावे, आपे तोलन हारा। ए मन रतन जवाहर माणक, तिसका मोल अफारा। मोल कित ही नाम पाया नाही, नाम पाया गुर बिचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजै, होर सब परम भुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। काया अंदर पौ पाओ वसै, गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चा अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा। पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। सा काया जो सतगुर सेवे, सच्चा आप सवारी। बिन नावे दर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। नानक सच वड्याई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा, घर दसवां एक ओंकार। सत गुर प्रसाद दुनिया ना सालाह, जो मर वंज सी। लोका ना सालाह, जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाहिया, सच्चा वे परवाह। रहाओ दुनिया केरी दोस्ती, मन मुख दा जमरन, जंपर बदे मारिय, वेला ना लहन। गुरमुख जन्म सकार था, सच्चा शब्द लगन। आत्म राम पर गासिया, सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया, दूजे पाए रचन। तिसना भुख ना उतरे, अंदन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता वैर करन। आप डुबे कुटुंब स्यों, आप डुबे कुटुंब स्यों, सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन। मोह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। ए मन जैसा सेवह, तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। महापुरखा का बोलना, होवै किते परथाए। ओए अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए। गुणकारी गुण संग्रह, अवरा उपदेसेन। सेबड़ भागी जे ओना मिल रहे, आंदन नाम लेन। देसी रिजक संभाह, जिन उपाई मेदनी। एको है दातार सच्चा आप तनी। सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल। आपे बख्शे मेल ले, सो प्रभ सदा समाल। मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए। प्रभ मिले ता मिल रहे, हमें शब्द जलाए। सो शोह सच्चा विसरे, त्रिग जीवन संसार। नदर करे ना विसरे, गुरमति विचार। सतगुर मेले ता मिल रहा, साच रखा उरतार। मिलिया होए ना विछड़ै, गुर कै हेत प्यार। फिर सालाही अपना, गुर कै शब्द विचार। मिल प्रीतम सुख पाया, सोभावंती नार। मनमुख मन न भिजई, आत मैले चित कठोर। सप्पै दुध पियाईया, अंदर विसन कोर। आप करे किस आखिया, आपे बख्शन हार। गुर शब्दी मैल उतरै,
ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਾਹੇ ਪਚਨ। ਹੋਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸੱਚ ਸਾਲ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਗੁਰਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵਿਗੁਚੀਐ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਪਾਇਰਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇਨਾ ਵਿਚੜੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਦਿਸਨ। ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਨ, ਅਵਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ। ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉਂ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਲਏਨ। ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਸੰਚੀਐ, ਚੱਲੈ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਣਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਜਮਕਾਲ। ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨ

हम इस जग में विरले जानिया नानक सच लहन सूही महला तीजा। हर जी सुखम गम है कित बिद मिलिया जाए गुर कै शब्द भ्रम कटिया अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हाँ तिनके बलिहारण मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूरब होवै लिखिया गुरपाणा मन लैन। वडभागी घर खोजिया पाया नाम निधान गुरपुरै वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए। सब अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिया शब्द वेखो लिवलाए। बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोह माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाह समाए। सेवा सा प्रभ पावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर आराध्या।

पै आप बेचाई, दर्शन हर देखण कह ताई, कृपा करह ता सतगुर मिल, हर हर नाम त्याई रहाओ। जे सुख देह ता तुझे अरादी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देह ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देव है सो खाई, नानक गरीब टह पया द्वारे, हर मेल लहो वड्याई, अखी काड धरी चरणा तल, सब धरती फिर मत पाई, जे पास बहालें तन तुझे अरादी, जे मार कड्डें पी त्याई, जे लोक सलाहे तन तेरी उपमा, जे निंदा तन छोड़ न जाई, जे तुद वल रहे तन कोई कहो आखो, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुर उपर, पै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कह ताई। चखड़ झागी मीह वरसे, पी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवे वो खारा, गुर सिख लंघ गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवक का होए सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई, नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे त्याई, जो तुद सेवै सो तू है होवै, जो तुद सेवै सो तू है होवै, तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस भावै तिस देवाई, जिस तू देह सोई जन पाए, होर नहफल सब चतुराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगै नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागै, जे बख्शे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोलै सो थाए पाए, मनमुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर बर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैण दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साईं, नानक।